खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

बेरहना किरिया यारा जाऊन जो गया सानू मिलिया नू पूरा वीक हो गया रहना किरिया यारा।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 5 जुलाई 2026 की एक रविवार वाली शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए है एक रविवार क्विज और आपको मुझे बताना है कि ये जो गाना है इसमें कौन से दो एक्टर्स ने अभिनय किया है.

नंबर आप जानते हैं 04397997667। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद चर्चा होगी अंग्रेजी सीखने पर, फिर चर्चा ऑस्ट्रेलिया में संगीत सीखने पर, फिर SBS फ्लैशबैक में आपकी मुलाकात करवाएंगे हम युवा सितार वादक स्नेहेश नाग से, और इसके बाद रहेंगे आपके फरमाइशी गीत भी। आज मैंने आपसे पूछा है कि भाई ये जो गाना है इसमें कौन से दो एक्टर्स ने अभिनय किया है,

0439-799-767 पे आप अपने जवाब हमको भेज सकते हैं, और अगर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो वो भी इसी नंबर पे बता सकते हैं। जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, आइए सुनते हैं आज के संक्षिप्त समाचार। पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अगले 5 वर्षों में 12 लाख नए घर बनाने के लक्ष्य से देश अब पीछे चल रहा है। इस सप्ताह जारी होने वाले नए आधिकारिक आंकड़ों से ये तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बुधवार को निर्माण गतिविधियों के ताजा आंकड़े जारी करेगा। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी, मकानों की बढ़ती कीमतों और निवेशकों के लिए टैक्स रियायतों में बदलाव से संपत्ति बाजार की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन आवास निर्माण में बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है। हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के वरिष्ठ अर्थशास्त्री टॉम डेविड के अनुसार मार्च तिमाही में भी नए घरों के निर्माण की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने न्यू साउथ वेल्स लेबर सम्मेलन को संबोधित करते हुए टैक्स सुधारों और जलवायु परिवर्तन नीतियों के विरोध पर विपक्षी गठबंधन की आलोचना की है। विपक्ष नेता एंगस टेलर का कहना है कि गठबंधन सत्ता में आने पर नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को समाप्त करेगा और आयकर व्यवस्था में ब्रैकेट क्रीप को भी खत्म करने का वादा कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी का कहना है कि उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य तय करना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर है। वहीं दूसरी ओर न्यू साउथ वेल्स में बर्ड फ्लू के सबसे घातक स्ट्रेन H5N1 का पहला मामला सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने पोल्ट्री उत्पादकों से एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। राज्य की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोकूम का कहना है कि संक्रमित पक्षियों की पहचान के लिए जमीनी टीमों, ड्रोन और नौकाओं की मदद से निगरानी तेज कर दी गई है। अब तक H5N1 वायरस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में कुछ 6 जंगली पक्षियों में पाया गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों लोग सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशाल खुले प्रार्थना परिसर में जुटे। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत में हुई हवाई हमलों में खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। काले कपड़े पहने और ईरान के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे शोकाकुल लोग खामेनेई और उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे बेटे मोस्तफा खामेनेई की तस्वीरें लिए दिखाई दिए। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति सार्वजनिक निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार समारोह को आयोजित कर रहा है। वरिष्ठ नेताओं और विदेशी प्रतिनिधियों के दर्शन के बाद खामेनेई का ताबूत उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूतों के साथ खुले परिसर में जनता के दर्शन के लिए रखा गया। और अंत में खबरें भारत से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरे का सबसे अहम पड़ाव इंडोनेशिया माना जा रहा है, जहां भारत और इंडोनेशिया के बीच बहुप्रतीक्षित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर मोहर लग सकती है। ये समझौता भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। इसके साथ ही इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस प्रणाली अपनाने वाला तीसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन सकता है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे दक्षिण चाइना सी क्षेत्र में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी और चाइना के बढ़ते सैन्य प्रभाव के बीच क्षेत्रीय देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमता को बल मिलेगा। दौरे के ऑस्ट्रेलिया चरण में भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत होने की उम्मीद है। इसी के साथ 5 जुलाई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी सीखने की। सबसे पहले तो बात करेंगे कि अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है, और अगर आप सीखना चाहते हैं या अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं तो उसके क्या रास्ते उपलब्ध हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इसी के साथ आज मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये जो गीत है इसमें जो दो एक्टर्स हैं वो कौन है, बताइए मुझे 0439-799-767 पर। गीत प्रस्तुत कर रही हूँ और उसके बाद अंश पर चलते हैं। जरूर संदेश भेजिएगा, आपके संदेशों के इंतजार में हूँ।

0: अंग्रेजी सीखना आपके छात्र वीजा की आवश्यकता और दूसरी शैक्षिक आकांक्षाओं के लिए एक रास्ता हो सकता है। ये आपके करियर अवसरों को सुधारने में आपकी मदद या आपका निजी ध्येय भी हो सकता है। शिक्षा के नए नए विकल्पों और सीखने के अवसरों की उपलब्धता के साथ अब अंग्रेजी सीखना उतना मुश्किल भी नहीं रह गया है। आज के ऑस्ट्रेलिया को जाने अंश में अंग्रेजी सीखने पर ही करेंगे विस्तार से चर्चा। भाई, अंग्रेजी के ज्ञान पर पकड़ बनाना आसान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई उच्चारण और मुहावरे समझना कितना मुश्किल हो सकता है। अंग्रेजी सीखने वाले नए शिक्षार्थियों के सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं। मार्सेला एग्विलर सरकार द्वारा संचालित वयस्क प्रवासी अंग्रेजी कार्यक्रम यानी अडल्ट माइग्रेशन इंग्लिश प्रोग्राम AMEP के साथ स्वैच्छिक शिक्षण समन्वयक हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी सीखने वालों के सामने डर सबसे बड़ी अड़चन हो सकता है।
1: So when someone arrives in a country, they might be too old. They feel they've been out of the education system for so long. They have no previous schooling, so they have no learning strategies. Understanding a new culture. There's a barrier there with people having that fear of making mistakes, sounding silly. People don't care if you make mistakes. Language is for communicating, and people just want to hear the message. You will only get better and better the more you use the language.
0: लैंगपोर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज कॉलेज की शिक्षण निर्देशक एलिसन लेनन के अनुसार औपचारिक शिक्षण भाषा की बुनियादी पकड़ को मजबूत करता है।
2: I think they get a much more solid foundation of English. They get a lot more confidence in their English to be able to go out and integrate into the daily life of Australia. I think just coming without any formalized English training, they're coming with bad habits, they're coming with low levels of English. Getting more of a formalized English training sets them up very well for future jobs. For future integration and for future study.
0: अंग्रेजी के ज्ञान का प्रमाण देना कुछ नए प्रवासियों के वीजा की अनिवार्य शर्त भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार वीजा आवेदनों के लिए कई सारे अंग्रेजी परीक्षणों का विकल्प देती है। टेफ, विश्वविद्यालय, निजी कॉलेज और भाषा केंद्र IELTS, CAE और TOEFL जैसे कोर्स सिखाते हैं। हेस्टर मोस्टार्ट एक अंग्रेजी प्रशिक्षक हैं। वे कहती हैं कि इन विकल्पों में से एक चुनने से पहले अपना लक्ष्य समझना बेहद जरूरी है।
3: Once you've established why you want to study, how long you want to study, and how much your studies are going to cost, then you need to look at course options. For example, students who are here for travel and fun, you probably want to look at general English courses. Some students want to graduate at their universities back home, so they're looking at places that offer TOEIC and IELTS. For more long-term options, there are schools that offer pathway programs
0: छात्र वीजा की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक शर्त यह भी हो सकती है कि छात्रों को किसी भाषाई स्कूल में कम से कम 20 घंटे की आमने सामने की पढ़ाई हर हफ्ते करनी होगी। कुछ भाषा स्कूल छात्रों को आगे की पढ़ाई से पहले अंग्रेजी सीखने का विकल्प पथ देते हैं। कुछ भाषा स्कूल आपको अंग्रेजी के योग्यता प्रशिक्षणों के लिए भी तैयार करते हैं। एलिसन लेनन समझाती हैं।
2: Different countries require different certificates. For example, if they're looking at changing visas or going to university, a lot of them will need an IELTS certificate. So we will train them in IELTS so that they have the techniques and skills to be able to sit that IELTS test. The Cambridge certificates, a lot of European countries require that English certificate to go back to their country and into their universities or be promoted within their industries. And the Asian countries usually require the TOEIC certificate.
0: ऑस्ट्रेलिया सरकार के गृह विभाग द्वारा संचारित वयस्क प्रवासी अंग्रेजी कार्यक्रम यानी अडल्ट माइग्रेंट इंग्लिश प्रोग्राम वयस्क प्रवासियों और मानवीय आधार पर आए लोगों की अंग्रेजी सीखने में सहायता करता है। मार्सेला एग्विलर AMEP में स्वैच्छिक शिक्षक योजना की प्रतिभागी के रूप में शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षक से मिलाती हैं। इस कार्यक्रम में बड़े बदलाव लाने की कई संभावनाएं हैं।
1: So they provide not only language tuition, but also friendship and encouragement to people who are sometimes very isolated. They help them with developing connections with the community. So someone who's sitting out there listening, thinking, I'm at home, I don't have language, I'm scared to speak English when I go out, I can't access services. Having a tutor to assist them with their individual learning needs is something.
4: SBS South Asian.
0: Your news from here.
4: And hits from home.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming,

0: connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit invinciblewifi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: You can do it. I'm here beside you to support you every step of the way.
2: अंग्रेजी सीखने का सबसे सटीक तरीका अभ्यास है, तो क्यों ना ये अभ्यास एक नए तरीके से करें? सुश्री एगुलर अपने तीन शीर्ष सुझाव देती हैं।
1: Watch teletext television. All programs have subtitles so they can listen, become accustomed to the Aussie accent. That's really one that people struggle with. And some people who are even very high level still struggle with understanding Australian common accent when they first arrive. That's a really great way to watch teletext TV and picking up Australian idioms and expressions, which are really important as well.
2: इसके साथ ही online उपलब्ध मुफ्त apps जरूर देखें. इनसे आपको भाषा सीखने के कई संसाधन मिल सकते हैं.
1: Duolingo is fantastic because the person can set their home language as the language of instruction. Bitsboard is wonderful for vocabulary practice. It's very colourful and engaging. Ausphonics is great for people particularly who are having pronunciation issues. Book Creator is terrific where people can make electronic books. So even a very low level person can take an image and create a book about their family with just one or two words on each page, even if they have no literacy.
2: वे आगे कहती हैं कि ऑडियो किताबें सुनने के साथ साथ पढ़ें भी। आप भाषा के उच्चारण, ताल और सुर को समझते हुए व्याकरण के साथ बेहतर समन्वय बिठा पाएंगे।
1: They're looking at the language and they're also listening to someone read it at the same time. So they can hear the pronunciation, the rhythm and music of the language. They're looking at grammar without realizing it and all the little pesky prepositions like to, at, in, for, which are very hard to learn. And they'll learn lots of new vocabulary as well.
2: ABC और SBS जैसे चैनलों पर उपलब्ध शिक्षण माध्यमों का भी प्रयोग करें। SBS Learn English आपकी अंग्रेजी सुधारने के साथ ही लेख, पॉडकास्ट और वीडियो के माध्यम से आपकी ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली और संस्कृति से भी पहचान कराएगा। यह भी जरूरी है कि आप वास्तविक दुनिया में भी लोगों से बात करें, समुदाय में बाहर जाएं। सुश्री मॉस्टर्ड का कहना है कि बाजार में कैशियर से भी बातचीत की जा सकती है।
3: That's an opportunity for you to practice small talk. So it comes with the idea of practicing anywhere, everywhere that you can. Even when you hop into the Uber, that's 15, 20 minutes of English language practice that you can have. So don't be on your phone. Try to engage that person. Use that opportunity as best as possible.
2: वे आगे कहती हैं कि सामूहिक गतिविधियां जैसे खेल या सामुदायिक आयोजनों में हिस्सा लें। आप केवल समुदाय का हिस्सा ही नहीं बनेंगे बल्कि अपनी अंग्रेजी भाषा के कौशल का भी अभ्यास कर सकेंगे।
3: You find Australian people generally, in my experience, really want to share and help people understand what Australia is about. And those are great ways not only to socialize, but practice your English language skills and build closer ties to the community.
2: ऑस्ट्रेलिया को जाने यानी ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने। और इस अंश के बाद आइए ले रहे हैं एक छोटा सा विराम यानी अल्पविराम। अल्पविराम के उस पार करेंगे चर्चा ऑस्ट्रेलिया में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने पर। आपको ये भी बताऊंगी मैं कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रही हूँ, लेकिन फिलहाल आपसे एक सवाल पूछा है कि ये जो गीत है इसमें कौन से दो एक्टर्स हैं, बताइए मुझे 0439799767 पर। जब तक आप संदेश भेज रहे मैं आपके लिए ब्रेक से वापस आती हूँ। आप मुझे ये गाना सुन करके जवाब भेज

0: और मेरे पास आपके जवाब भी आ गए भाई। चेतन शाह जी ने सिडनी से, कुमार साहब ने, और कुमार साहब ने एक हिंट भी दिया आपके लिए कि ये भाई श्री 420 का गीत है। जी बिल्कुल। और अलका केशारी जी ने मेलबर्न से, और उन्होंने तो, मैंने तो सिर्फ दो एक्टर्स के नाम पूछे थे तो जो लीड एक्टर्स हैं उन्होंने तो और भी एक्टर्स के नाम साथ में भेजे हैं। इसके साथ कुमार साहब ने कहा कि भाई उनको प्यार हुआ इकरार हुआ गीत सुनना है, मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको। और यश जी ने भी अभी अभी हमको एकदम सही जवाब भेजा है। मैंने आपसे पूछा है कि इस गीत में कौन से दो एक्टर्स ने काम किया है, आइकॉनिक एक्टर्स हैं, और यश जी बता रहे हैं कि वो कैनबरा से हैं। आइए अब समझते हैं कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया में आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है आजकल मैं भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रही हूँ। कौन सा सीख रही हूँ आप गेस कर सकते हैं। चलिए आज आप ये गेस कीजिए कि कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश कर रही होंगे मैं। लेकिन फ़िलहाल ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। क्या आपके पास एक ऐसा वाद्य यंत्र है यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो घर पर धूल खा रहा है? शायद आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संगीत सीखें, या हो सकता है कि आप खुद लंबे समय से किसी ग्रुप के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाह रहे हों। कारण चाहे जो हो, किसी वाद्य यंत्र को बजाना सीखना न केवल एक मज़ेदार क्रिया हो सकती है बल्कि आपके लिए नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। बचपन में या वयस्क उम्र में भी संगीत सीखने के फायदे अनगिन हैं। हार्वर्ड चैस्टन एक स्कूल म्यूजिक कोऑर्डिनेटर हैं। वे समझाते हैं कि किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना आपके सभी इंद्रियों को एक साथ संलग्न कर सकता है।
1: And then, of course, it's the amazing amount of computational skill and translation skill and communication skill that is happening all at the same time. So, as a total activity, obviously the benefits are massive. Very few subjects that you learn at school or in life actually bring it all together in one package. Think about numeracy and literacy. Music has all of that embedded in it and more. It's sort of a cross between numeracy, literacy and PE.
0: अब ऑनलाइन कई ऐसे विकल्प हैं जो आपको मुफ्त में संगीत सिखाते हैं। आप इन ट्यूटोरियल्स की मदद से अपनी प्रतिभा आज से ही निखारना शुरू भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने वाद्य यंत्र का पूरा पूरा सदुपयोग करने के लिए अपनी तकनीक पर काम करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इसका सैमसन एक संगीतज्ञ हैं और तार यंत्र यानी वायलिन और वायोला बजाना सिखाती हैं। उनका कहना है कि एक संगीत शिक्षक से सीखना काफी फायदेमंद हो सकता है।
2: The great thing about having a teacher is that you're right there with them. They can see and hear how you're playing and then give you tips that are specific to that instrument. They also demonstrate and you can see and hear how they're doing it. The other great thing about lessons is that you get to play with other people, whether it's just you and your teacher playing a duet, when you're learning how to play in tune together and in time together, you pick up so many skills that way.
0: बच्चों के लिए संगीत की क्लासेस ढूंढते वक्त स्कूल में चलाए जा रहे संगीत शिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान जरूर दें। हालांकि आपके बच्चे के लिए उपलब्ध संगीत शिक्षा की गुणवत्ता आप किस राज्य में रह रहे हैं उस पर काफी निर्भर करती है। स्कूलों में आने वाली फंडिंग और वहां की शिक्षण प्राथमिकताएं भी ये तय कर सकती हैं कि वहां किस तरह की संगीत शिक्षा उपलब्ध होगी। उदाहरण के तौर पर सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा में केवल रिकॉर्डर बजाना सिखाया जाता है। लेकिन हार्वर्ड चैस्टन समझाते हैं कि कई ऐसे स्पेशलिस्ट संगीत स्कूल भी हैं और इनके अलावा भी कई विकल्प हैं।
1: Obviously with the Australian curriculum and also independent schools have their own curriculums. They have requirements for music, so your average state high school will have a music class, but often in schools they also run individual lessons. So a child can choose to do that, usually costs a little bit extra. And tutors come from the professional ranks, so musicians come and teach in those schools one-on-one and sometimes in small groups.
0: कई स्कूलों में संगीत सिखाने के लिए विशेषज्ञ संगीत शिक्षक रखे जाते हैं। चाहे स्कूल का संगीत कार्यक्रम कितना भी बड़ा या छोटा हो, स्कूली शिक्षण परिवारों को स्कूल के समुदाय से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। हार्वर्ड चैस्टन कहते हैं कि आपको स्कूल के कार्यक्रम के इतर भी एक संगीत के गुरु मिल सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके लिए काम करवा सकते हैं।
1: One good place is to go to your local music store because they'll have people there who are music tutors. You can also contact people at schools. If you contact a music coordinator at school, they'll have a lot of people. You can also look people up online as well. There's also a register in Australia for a music teacher. So there's a register in Melbourne for individual music teachers, and each state will have an equivalent list.
0: आपके प्रदेश में Music Teachers Association आपको शिक्षकों और सिखाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की एक सूची मुहैया करा सकती है. सुश्री सैमसन सुझाती हैं कि बस आपको करना ये है कि ऑनलाइन संगीत के शिक्षण, वाद्य यंत्र या सामुदायिक संगीत समूहों को खोजना है.
2: Even using a maps app and putting in music lessons or folk music or jazz or rock, they do come up on those apps, and the internet is a great source for those sorts of little community associations where anyone of any age and playing ability is invited to come. For example, in Canberra, there is a school of rock that's just a community association. Sometimes the kids learn as well as the parents.
0: एक वयस्क के तौर पर संगीत सीखना शायद थोड़ा डराने वाला हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि संगीत सीखने के लिए कभी देर नहीं होती. अपनी निजी प्रगति और मनोरंजन के परे संगीत सीखना एक अच्छी सामाजिक क्रिया भी हो सकती है. कई वयस्क संगीत इसलिए भी सीखना चाहते हैं कि वे एक अच्छे ग्रुप का हिस्सा बन सके. एक समूह का हिस्सा बनना संगीत सीखने की प्रक्रिया को एक बेहतरीन अनुभव बना सकता है.
2: Learning as an adult is absolutely wonderful. Group lessons as well as one-on-one lessons are very much available in most places in Australia, and they're of all levels. There's beginners as well as people who played a little when they're children and they want to learn again as an adult.
0: अगर आपके शिक्षक का तरीका आपके तरीके से भिन्न है तो निराश ना हो. इसका ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वाद्य यंत्र सीखना ही छोड़ देना चाहिए. सुश्री सैमसन समझाती हैं.
2: Feeling frustration or anxiety or being upset or crying in the lesson, that's something that can happen to people. Teachers are perceptive, but they might not know how they can change their teaching style to help you find the way to learn. So although it's difficult, telling your teacher what you're feeling can be so useful, because the teacher then says, okay, so how about if we try something different?
0: कभी कभी दूसरे शिक्षक या दूसरा यंत्र ढूंढना भी एक समाधान हो सकता है, और दूसरा यंत्र ढूंढने के विकल्प अंतहीन है. हार्वर्ड चैस्टन का कहना है कि आपके स्कूल का संगीत विभाग ही आपको दूसरा यंत्र मुहैया करा सकता है.
1: Sometimes a school will invest in buying instruments and they will loan those instruments out to the children at a fee. But otherwise, other schools put it on the students and the parents. If they want to learn an instrument, then they have to provide the instrument. And at some schools, it's kind of both.
0: Second-hand music stores और वाद्यंत्र रिपेयर करने की जगहों पर आपको सस्ते और अच्छे वाद्यंत्रों के विकल्प मिल सकते हैं. दूसरी ओर आप गैर लाभकारी संस्थाएं जैसे गिटार गैदरिंग डस्ट में भी संपर्क कर सकते हैं, जो उन वाद्यंत्रों के लिए घर ढूंढती हैं

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: लोक समूह या म्यूजिकल फेस्टिवल्स ढूंढें। ये सभी रंगीन समुदाय इसीलिए बने हैं क्योंकि लोग संगीत से प्रेम करते हैं, ताकि संगीत प्रेमी साथ आ सके और सुरों के जरिए विकास और साथ की एक नई लीग चलाई जा सके। मेलिसा कैंपनोनी द्वारा बनाए गए इस ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के अंश को आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने। और मेरे पास आपके सही जवाब आते जा रहे हैं सुरेंद्र चावला जी क्रिनबर्न से। इसी के साथ मेलबर्न से यावर जी, आदित्य क्रेगीबर्न से और कुमार साहब, आप सबके सही जवाब आए हैं। मैंने आज आपसे पूछा था कि भाई जो दो आइकॉनिक एक्टर्स हैं इस गीत में वो कौन है, और आपको पता है जो गाना मैं बजाने जा रही हूँ ना उसमें भी वही दोनों एक्टर्स हैं। अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकती मैं, और ये गाने की रिक्वेस्ट अभी आई भी थी, तो इसी गीत के साथ ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए SBS हिंदी पर। इसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे स्नेहेश नाग से SBS फ्लैशबैक में।

0: guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
6: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को, और आज मैंने आपसे पूछा था कि ये जो गीत है इसमें कौन से दो आइकॉनिक एक्टर्स हैं.

0: आपको मुझे ये बताना है कि इसमें कौन से दो एक्टर्स हैं। और इसी के साथ अब आइए SBS फ्लैशबैक में मुलाकात करते हैं स्नेहेश नाग से, जो कि एक युवा सितार वादक है और हमारे स्टूडियो में थे कुछ समय पहले जब वो अपने ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे। आइए सुनते हैं क्या बातचीत हुई थी हमारी और उनकी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। स्नेहेश नाग एक ऐसे सितार वादक हैं जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरते हुए सितारे हैं। इनके पिता जाने माने सितार वादक सुगतो नाग हैं। स्नेहेश ने सितार के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है, हिप हॉप में ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट के साथ और जैज के साथ भी इन्होंने सितार मिश्रित करके अपने संगीत को आगे लेके आया है। तो आज वो हमसे चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अपने पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पर हैं। तो स्नेहेश, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है।
1: बहुत-बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: स्नेहेश, सितार कैसे शुरू किया? मतलब एक विरासत तो है ही और आज आप हमारे साथ आए हैं तो अपने पिता का ही सितार लेकर के आए हैं, आपके लिए कैसे अच्छा हुआ?
1: ये एक्चुअली बहुत ही स्पेशल टूर है मेरे लिए। एक तो ये दिस इज माय फर्स्ट टूर एंड सेकेंडली इट्स इवन मोर स्पेशल क्योंकि यस आई एम गेटिंग टू प्ले माय फादर्स सितार, नोइंग दैट मेरे पिताजी यहाँ पे बहुत दफा बजाए ऑलरेडी। ही इज बीन प्लेइंग हियर फॉर द लास्ट 5 to 10 years on and off. When I was young, मुझे ऐसा लगता था कि हमको ऑस्ट्रेलिया विजिट करना है। Of course, my father has played such an important role in me being a musician. It kind of feels like a very fulfilling moment for me to do this.
0: और स्नेहेश, आप हिंदुस्तानी क्लासिकल के दो घरानों को मिला करके आगे चलते हैं, सेनिया शाहजहांपुर और इनायत खानी, और फिर उसमें एक इंटरनेशनल पुट भी है। You've got an international collaboration जिसमें आप फिर वेस्टर्न म्यूजिक को भी लेकर के आए, तो किस तरह से आपने अपने संगीत को बीते सालों में बदलते हुए देखा है?
1: बहुत सारे मतलब फेजेस, आई थिंक 5 साल या 4 साल ऐसा कुछ थे। हम मेरे संगीत का शुरुआत एक्चुअली हुआ वोकल म्यूजिक से क्योंकि दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इट हैज सच अ इम्पॉर्टेंट वोकल एस्पेक्ट टू इट, हिंदुस्तानी रागा म्यूजिक जो है। ऑफकोर्स पिताजी since he's a sitar player, it was inevitable ki I would have to pick it up at some point. Whether I continued with it was another question. लेकिन शुरुआत तो डेफिनेटली हुआ। लेकिन what I really liked about my upbringing is that outside of हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक देर वॉज अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो प्लेइंग घर पे। तो घर पे मतलब वेस्टर्न कुछ ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, विवाल्डी, बाक, वेस्टर्न क्लासिकल इफ यू आर टॉकिंग बरोक, या फिर इवन मोर कंटेम्पररी थिंग्स लाइक बीटल्स, पिंक फ्लॉयड, स्पेशली माई पिताजी उनके साउंड सिस्टम होते थे घर पे बहुत अच्छा, ओपन्ड अप अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोनिक एनवायरमेंट इन माई ब्रेन। आई थिंक टेकिंग दैट फॉरवर्ड, यू नो, आई वेंट थ्रू वेरी मैनी डिफरेंट फेजेस इन माई म्यूजिकल जर्नी। आई एक्चुअली देर वॉज इंटरेस्टिंगली अ पोर्शन फेज इन माई लाइफ एंड आई वॉज वेरी डिसकनेक्टेड फ्राम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। बोलते हैं ना एंग्री टीनेजर, जिसको एंग्री टीनेजर फेज जब था हमारा, हम इससे दूर रहना चाहते थे। हम रॉक म्यूजिक, पंक म्यूजिक, ये सब यू नो वाज मोर इंटरेस्टिंग एंड रेजोनेटेड मोर विथ मी। आई वाज वेरी लकी क्योंकि यू नो द एनवायरनमेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विथ माई फादर, विथ कम्युनिटी दैट आई ग्रो अप विथ, वाज ऑलवेज देयर अराउंड मी। There's something about, you know, you being exposed to a particular type of music from a very early age that really impacts you for the rest of your life, I think. And I'm very grateful ki mere pitaji wo, you know, he used to drag me to all these different concerts that were happening. Yeah, he kept me very involved with Hindustani classical music. Gaadi school mein jaate the, to gaadi pe samay beete, to he used to sing me some notes and ask me what the notes are. Or, ये नोट गाए तो इसका राग क्या है बताओ, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। सो समथिंग इन माय यू नो वेरी चाइल्ड ब्रेन, ऑल दोस थिंग्स काइंड ऑफ क्रेप्ट इन एंड लेटर ऑन इट ऑल केम बैक टू मी व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग हिंदुस्तानी म्यूजिक अगेन एंड आई कैट काइंड ऑफ सॉ ऑल ऑफ दीज अदर एलिमेंट्स, ऑल द अदर टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट आई वाज लिसनिंग टू एंड आई सॉ ऑल ऑफ देम वर एक्चुअली प्रेजेंट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यू नो क्योंकि इट्स सच अ डीप type of music and it encompasses I think the entirety of the human experience, all the types of emotions that we can experience. Though, and it's very improvisatory as well. So it allows the performer to really express very authentically what they're feeling. The music, it's just so open. There's so much variance between the ragas ki, you can express all these different types of emotions, whatever you're feeling through it. I realize ki, it's one of the best, ways, musically speaking, for me to express.
0: Snehish, वेस्टर्न म्यूजिक की अपनी एक अलग पद्धति होती है और हिंदुस्तानी की अपनी एक अलग पद्धति होती है. जब आप उन दोनों को मिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक अडेप्टेशन का जो प्रोसेस होता है, कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए?
1: अडेप्टेशन डिफिकल्ट है क्योंकि अडेप्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड और स्टडी द अदर टाइप ऑफ म्यूजिक दैट यू आर ट्राइंग टू अडेप्ट, क्योंकि भाषा अलग है. अल्टीमेटली भाषा एक ही है, नोट्स है, फीलिंग्स है, लेकिन द वे इट्स थॉट एंड स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मेटेड. तो एक तो चीज़ है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हारमोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन अ मोर मेलोडिक टाइप ऑफ म्यूजिक, रिदमिक एज वेल, मेलोडिक एंड रिदमिक प्राइमरली. तानपुरा के बारे में आपको पता है, तो दैट इज़ अ यूनिक एलिमेंट एंड क्रिएट्स दिस कॉन्स्टेंट drone sound, right? But it always fixes it to one particular note usually. So that's very different than the Western tradition. It can be very different in to a lot of Western repertoire, jahan pe harmony is such an important element as well. Harmony matlab obviously you can't have the same sa, it's always changing, and depending on the type of music, the music you're playing. Harmony ke saath matlab jo hamare raag sangeet hai wo kaise काम कर सकते हैं. स्टडिंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट ओवर द ईयर्स, ओनली नाउ हैव आई रियली फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है, जो हो रहा है वो क्लासिकल तो नहीं है, हिंदुस्तानी क्लासिकल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो एक तो प्योरिटी जो है, प्योरिटी रखने के लिए यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ सर्टेन वे दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर सो लॉन्ग. जस्ट मिक्सिंग इट विद समथिंग एल्स, इट डजंट कीप द ऑथेंटिक form of the music anymore.
0: I've been reading, मैंने कहीं पढ़ा बहुत recently कि प्रेम में आप खुद को थोड़ा कम नहीं करते, थोड़ी जगह बनाते हैं ताकि किसी और के आने की जगह और आप एक बड़ा होल बना सके. So I think you're making a bigger hole by basically incorporating more elements there. और उसी से आपने कहा कि आप पढ़ रहे हैं तो आगे चले उस पर, एंड यू've done a master's in music technology. वो कितना मदद करता है आपको आपके म्यूज़िक को क्रिएट करने में, क्योंकि आप अपना म्यूज़िक भी कंपोज करते हैं, लिखते भी हैं. How does that work?
1: Music technology, I did my master's in music technology, Georgia Tech se, US mein, and mera ek bahut hi kareeb mentor Parag Chordia bolke, he learned from my dada guru, actually my guru also, Pandit Buddhadev Das Gupta, who also happened to be my father's guru, one of my father's gurus. Parag ji is also a student of my dad now, so he used to run one of the departments in the School of Music. He opened that door for me. Lekin I think I always wanted to kind of mix my background in engineering. So I did electronics engineering, academic side mein. Of course, I had music parallelly happening. It made sense for me to kind of find a way to mix, combine them. Music technology jo course tha, wo turned out to be the perfect one. Helped shape my way of thinking. It also introduced me to new technology, jo software wagaira use karna padta hai. Music production hai, bahut sare aspect hai music writing ka. उसके ज़रिए हम ये कर पाते हैं बहुत मोर ईजीली देन आई मे वुड हैव बीन एबल टू. आई एम जस्ट इन्जॉइंग डिस्कवरिंग दिस न्यू वेज ऑफ राइटिंग म्यूजिक, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसका साइड इफेक्ट्स भी है बहुत, लेकिन इट ओपन्स अप क्रिएटिव डोर. एंड इट ऑल्सो रियली इम्पैक्ट्स द वे यू थिंक अबाउट म्यूजिक. एक तो होता है कि टूल्स है, टेक्नोलॉजी है for at your disposal, lekin usko use kaise karna chahiye, those kinds of that information I got was very very important.
0: Snehish ke sath ab tak hui hamari baat cheet mein humne jana ki unhone sitar kaise sikha aur aage us fun ko kaise badhaya. अगले अंश में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना म्यूजिक एल्बम ही नहीं बनाया बल्कि दो देशों के बीच में रहते हुए बनाया, और समझेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सितार जैसे पारंपरिक वाद्य को एक नई पहचान मिल रही है. तो जुड़े रहिए हमारे साथ SBS हिंदी पर. और इसी के साथ ब्रेक पर जाने का समय हो गया है. आते आते लेकर के आऊँगी दूसरे हिस्से की बातचीत और आपके पसंद के कुछ गीत भी। बने रहिए SBS हिंदी पर वैशाली के साथ।
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Launch season 4, the Arctic.
8: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
9: It's a whole new frontier.
10: Oh, my God!
8: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand. Shift into gear and watch the world's most brutal race. Brace for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. Oh. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
0: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वैशाली को और क्योंकि समय थोड़ा कम है और आपके फरमाइशी गीतों की एक छोटी सी फेरिस मेरे पास आ गई है तो आपको सुनाते हैं आज गीतों की रेलगाड़ी। और सबसे पहले शुरू करते हैं उस गीत के साथ जिसके बारे में मैंने आज आपसे क्विज पूछा था। और क्विज क्या था? क्विज ये था कि भाई ये जो गीत मैं बजाने जा रही हूँ उसमें दो कौन से आइकॉनिक एक्टर्स हैं। आप सब ने सही जवाब भेजा और वो जवाब था राज कपूर और नरगिस। श्री 420 का ये गीत था और जिसे मैं अब आपके लिए लेकर के आ रही हूँ।

और ये जो अगला गीत मैं लेकर के आ रही हूँ ना, वो सिडनी के मौसम को ही देखते हुए लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि महीना है कौन सा। और इसी के साथ आज के लिए आपसे अलविदा भी कह रही हूँ। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए वैशाली को इजाजत। नमस्कार।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा।

0: SBS South Asian.
1: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शो के It's okay, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़की

0: थी वो जा रहा है कोई शबम गुजार के, वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर।
1: SBS South Asian.

0: SBS South Asian.
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो
2: दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो

0: Miss the name of a song? Find out anytime on the SBS audio app or website.
1: आ गले लग जाओ मेरे यार, तुम्हारा ही इंतजार है, दिल को बेहद तुमसे प्यार है।

बिहार की, वो जा रहा है कोई शबम गुजार की। वीरा है मैं कदा खुमो सावर उदासी,